0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।
1: ओ मेजू नमस्कार है।
2: नमस्कार नमस्कार मेजू नमस्कार।
1: ल बधाई छ है, बिहे गर्न लाग्नु भएछ।
2: ल धन्यवाद धन्यवाद मेजू। अनि बधाईले मात्रै त पुग्दैन है मेजू, जनता गएर छमी नाच्नु पनि पर्छ क्या।
1: खै मेजू म त बिहेमा आउँदिन होला।
2: ल मेजू।